उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

देखो ये दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको। देखो जी देखो एक बार इस तरफ देखो, ये दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।

देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दीवाना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।

एक बार नारद मुनि के कहने पर माँ पार्वती त्रिपुरारी भोलेनाथ जी से अमरनाथ की कथा सुनने की जिद करती हैं और कैलाशपति पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। भोले बाबा अमर कथा सुनाते रहते हैं और एक तोता उस अमर कथा को सुनता रहता है और बीच में हुंकारे भरता रहता है। भोले बाबा देखते हैं तो पार्वती माँ और नारद मुनि के कहने पर माँ पार्वती त्रिपुरारी भोलेनाथ जी से अमरनाथ की कथा सुनने की जिद करती हैं और कैलाशपति पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। भोले बाबा

देखा। उन्हें समझते देर न लगी कि अमर कथा यही सुन रहा था। तो भोलेनाथ क्रोधित होकर तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं और तोता बेचारा अपने प्राण बचाने के लिए सूक्ष्मतम रूप बनाकर सत्यवती के गर्भ में चला जाता है। वही तोता सुखदेव मुनि कहलाए, जो आज भी अमर है। तो भक्तों,

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: एक बार एक भक्त शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाने के लिए जाता है और जैसे ही जल चढ़ाने लगता है उसकी नज़र ऊपर लगे सोने के घंटे पर पड़ती है तो उस भक्त की नीयत बदल जाती है। वो सोचता है कि क्यों ना ये सोने का घंटा मुझे मिल जाए तो बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो वो शिवलिंग पर चढ़कर घंटा उतारने लगता है। भोले भंडारी उसकी भक्ति को देखकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि लोग तो फल और फूल मुझ पर चढ़ाते हैं, तुमने तो स्वयं को ही मुझ पर चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। तो भोलेनाथ उस भक्त को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वो भक्त उस सोने के घंटे को ही मांग लेता है और भोलेनाथ खुशी खुशी उसे दे देते हैं। तो आइए भोले भंडारी का ये भजन सुनते हैं।

Jala. Oeh, Jala Lare heeft The Greatest Voices of Bollywood. Mumbai Beast gezet. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barenwitte Krega Concert, Aapkiewaansfeer. Met 5 prachtige, krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadi, Nizam Waag de Zijn Kisa, Mumbai Beach, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoor Pass is Taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koetsticket maak je er geheer. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए खाया बिनकोट ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाया बिनकोट ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

एंड रहियो कनिका कपूर के आवाज में आप इस गीत को सुने। और सुनने वालों, उजाला रेडियो कतार का नंबर है 020-409-0807। बेलन अलीन तेदस कंतोर उरन तू जाने है।

मेरा दिल का टेलीफोन करता है रिंग रिंग रिंग रिंग जुनिता गांधी एंड नकाश से आप सुनिए, उजाला रेडियो है ये।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

बत्तियां बुझा दो और थोड़ी सी पिला दो, अंधेरा में जो होगा सुबह उसको भुला दो। आजकल के गाने ऐसे बनते हैं, मेरा क्या कसूर इसमें यार। हम तो गाना के टाइटल आपको देते हैं बस, और सुना देते हैं गाना।

किन्ना सोना तनु रब ने बनाया, जी करे तनु देखता रहो। जुबिन नौतियाल से आप सुने उजाला रेडियो है कुछ इन दिनों के गीतों के साथ। और हम जानी ला कोई के मोई लगे है, कोई के ना मोई लगे है।

गीत का बोल बम डिगी डिगी बम बम या दैट इज द टाइटल या ओ गीत के गाने वाले जैक नाइट एंड जैस्मिन वालिया एंड स्टेशन द लुक्स्टर एंड गजलस्टर उजाला रेडियो

दिल चोरी साड़ा हो गया, दिल करिए की करिए या यो यो हनी सिंह एंड सिमर कौर से आप सुने उजाला रेडियो है ये नॉक स्टेज या

और डांस बसंती के बाद प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे एंड नेमर्स दी कैप खुदराइट न्यू नाउ या एक वेट है नीत इधर इन फिन से लुक हम भी eigenlijk na optimist niet allemaal maar चिंता ना करिए want अभी थोड़ा दिन के बाद हवा में सब उड़ जाए सब गुम हो जाए एंड दान क्लार दोन

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के जर्ज़्मे पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज़ ना भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम, फ्राइडाग 11 सितंबर 2026। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहदिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चुका है 9:09। खुद मोर खालमा वेलकम, यू आर उजाला रेडियो।

जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं कुछ मिले जुले संगीत से। आप सभी सुनने वालों को मैं खिदमत करने वाला हूं। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। चाहे आप अपने काम पर प्रोग्राम को सुनते होंगे, वर्कशॉप में आओ या तो अभी आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, ब्लाइफ मालेखन। चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन के साथ। प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं और आप लोग सुनेंगे दुर्गा चालीसा अनुराधा पौलवाल जी के आवाज में। ये शानदार सा भजन जो आप लोग सुनेंगे।

आओ इस तरह से ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, अनुराधा पौलवल जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो।

अल्लाह की तुमसे लगन साथी कभी छूटे ना, आओ इस तरह से लता एन करोड़ का दिल चराना वाला हार्ट मिले स्माइटी मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे और आप लोग वहां पर फोन कर सकते हैं। फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं, या तो आप ईमेल भेजाइए wavy.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा। बस याद रखना सुबह में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उजाला रेडियो का दफ्तर खुला रहेगा, आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। करीबन 25 मिनट व्यतीत हो चुका है, 9:25 ओवर 9। गुड मॉर्निंग

वेल, कितना मोई, कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने आई बोई। शुक्रवार का प्रोग्राम, वीकेंड का प्रोग्राम, यू आर उजाला रेडियो का। और देखा जाए लीना रामेश्वर इसके देश शहर में प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख।

नीली नीली घटा। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, खास करके अश एंड करोड़ का दिल चुराने वाला हार्ट मिलियस माइटी मुकेश एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। और आज शुक्रवार का प्रोग्राम, वीकेंड का प्रोग्राम एंड आज का बनाओ कोई बात खाओ फंडा कोकन यार, ऐसा मौसम में खाली लेकर लेकर खाए मन करे खाए के। वंत एक शिशवाल हम बताए जिकुल वेरवा बपाल करे है कि आज का बनाओ कोई का खाओ खोई। अगर आप लोग जान गए हुई है तो आप लोग को मुझे ऐप कर सके हैं और यू आर का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0808 पर 020-363-0808।

0: अरे यार मुझको तेरा प्यार चाहिए,
1: इस दिल को उम्र भर बस तेरा ही साथ चाहिए।
0: इस तरह से ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। और बाहर का मौसम आप लोग से बता दें कि बारिश का मौसम है, छिसिर मिसिर पानी बरसे है। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो हमारे पास ही रहिए,

तेरी दिल की दुआ चाहिए, आयुष सरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। करीबन देखा जाए 4 मिनट बाकी रहा 10 बजे में फिर मिलते 14 और इतरक शहर में जहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं और भाई राजेश बनारसी खुद मूर्ख। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ यार, और मोइस अपना काम हुआ करिए यार। अगर आप लोग घर पर चाय या तो कॉफी बैठ कर पीते होंगे, या तो खेम पर तेई बनाए की वेर में बैठ कर पीते होंगे, या तो ऑन बैज करते होंगे, स्वादिष्ट ऑन बैज कीजिए। एक

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और आज शुक्रवार 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं खुदा मोर खाल माओ आप सभी को शुभ दिन और फैन वीकेंड तो खमेंस हमारे तरफ से सभी को शुभ वीकेंड वीकेंड की जय हो जो भी वीकेंड में करिए तो जाने हैं प्यार से दुलार से करिए नहीं तो ना करिए बेंच आनंद कोकन कोक सालमा चाहे जो से पकाइए एंड मोई से खाइए और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए संद्रा भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख और

मल चांदनी रात में तेरा ख्याल जो आता है, आयुषरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, दीमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुन रहे और खुद मूर्ख प्यार के साथ गाना पेशा।

तेरा साथी चाहिए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुन रहे, हमारे प्यारे सुने बोलो युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो इस गीत को मांग करने वाले हैं देखा जाए फेंसर पोल्डर में, जहां पर इस वक्त एमी जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं।

0: तू बता अब कहां मैं तुझे मिलूं। अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम भी बैठ करके सुन रहे हैं और खास करके देखा जाए सुतमेर शहर में आसमी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुन खुद मूर्ख। तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ और एक और रसप अंदर आ रहेगा।
1: तेरे बिना भी क्या जीना।
0: और एकदम बेल्कि शहर से दूषी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने वो बनाएगा आज बड़का खरनाल मसाला में खूब तीता तीता आई बॉय लेकर और कोक सलमाल
1: ठहरती है
0: और क्रोइट नाखल के चाय बैठ कर पिए है ऐसा उक लेकर एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए आसमी ये गाना तो

बल यार तेरे बिना अभी क्या जीना। आई सरो से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों।

बस यार एक तेरा साथी चाहिए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आज शुक्रवार का सुबह का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। ए खुद मोर खलमाओ, चाहे जो ऊंची आप लोग करते होंगे, वेल यू आर के साथ।

और देखा जाए देन वो शहर में जहां पर इस वक्त अनूप महाबाली भी प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं। ए खुद मोरख और चलिए गाना तुम्हारे नाम अनूप।

0: बोलो सोना, कल तक बहुत हीरो बनत रहा ना, अब का हुआ? एक नजरिया में चुप समझदार किद, नैना से मारा,
1: आरे आरे।
0: हंस के पुकारा,
1: सोना रे सोना,
0: दिलवा बेचारा
1: ले गेला, ले गेला।
2: और दिलवा बेचारा ले गए ले ना, अरे हम तो से बोली तो हम तुसे बतावत रही, मैं तुम्हार बतिया ना सुन ले। और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और देखा जाए लेमन शहर में, और इस वक्त देखा जाए पवन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। यही खुद मोर खाल माओ युवार उजाला रेडियो, 13 मिनट बाकी रहा 11 बजे में। अरे यार मनवा मोरा

अरे यार मनवा डोले रे जब तू मेरा सामने आवे रे, ऐश्वर्या से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और बेना वीकेंड थे यार, हम तो लोग से बता दे ली कि वीकेंड में क्या हुए है। मई साल वीकेंड में हम लोग मोई मोई खाना बनाए लो, यवे लेकर लेकर खाना, चटकीले चटकीले लुटपुटा रे, तीता तीता मसाला में, और दिलवा बोले दिल मेरा

वाओ वेल यार, मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक यार, एंड गुड़िया तेरी याद में मारा, अब तू जाने क्या हो सकता है यार, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अरे यार चलन देना। आई बोल

और हमारे प्यारे सुनने वालों बैना बैना एलोफिर ठीक के 11 बजने वाले हैं और ना द ब्रेक ना द रिक्लाम यार, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। आई बॉय यू आर उजाला रेडियो है जबल।

0: करो।
1: उजाला रहे आपके वास्ते सुनवालो जातदार सनीचर 19 सितंबर को मेरफार थिएटर में, हाँ आमस्टरडम के मेरफार थिएटर में ये जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है। द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड
0: मेरा ही होना होगा,
1: जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नॉक फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे। ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड ज्यादा 19 सितंबर टिकट गदाम, कुछ टिकट बाकी रह गए हैं। रंग 1 20 यूरो, रंग 2 15 यूरो एंड हैप्पी एंड स्टार्स दन कोश जाओ काच मार 3,50 €। चेक ऑफ meervaart.nl इनलोप vanaf 7 uur Meervaart Theater में zaterdag 19 september।
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने यार, और युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, और देखा जाए आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को अपन ओतो में वेल फ्रीदा कहती बा, और आनंद जग्गू ये गाना तुम्हारे ना भाई जी

करीबन 13 मिनट व्यतीत हो चुकल है 11:13 ओवर 11 और 12 बजे तक आप लोग के साथ हम रहेंगे आखिरी भाग या मैं लास्ट खत्म यार अब कितना हल्ली। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे राना माताई के आवाज में वादिया मेरा।

एंड कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना। वेल एगो इतना विशाल रेसिप अंदर आल हैगा कटहर। वेल कटहर कटहर के तरकारी में के इन कोकस मेलक या आशमी लेकर होर कटहर के तरकारी फोरते से गोरा सेप अंदर आए लेगा। कटहर के तरकारी में केप इन कोक

अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही विशाल गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड अब की बार वीकेंड है यार, यबो, हियर वी गो, यू आर उजाला रेडियो

तेरा मस्ताना एंड हमसे कोई भूल ना हो जाए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुने वालों, एक और रसेप अंदर आए हैं, वेल अ मोय रसेप नतुरलिक। गुडमॉर्गन, वाई एटन वंदाग मिक्स डाउन मेट कलौजी गेवुल्ड मेट ओली सार्डिन गबाकन विस। ग्रुचेस गीता आउट सुतमेर। वेल गीता दंक यू वेल। आओ चलिए गीता, ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं। आई बॉय लेकर कलौजी गेवुल्ड मेट ओली सार्डिन जबेल आई बॉय। वाट एन मोय रसेप, और लेकर eet u smakelijk voor strakjes.

इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एक मैं और एक तू आई बॉय, कितना विशाल कितना मोई गाना। एंड यू आर उजाला रेडियो है, हम सुरम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। एंड वीकेंडों में चाहे जोन सी करिए, वेल हम हरदम बोली लो अब बोलते रहो, प्यार से करिए नहीं तो ना करिए, बार बार देखो एंड हजार बार देखो यार, हियर वी गो।

वेल यार बार बार देखो एंड हजार बार देखो, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए अम सलाम, और उसमें हमारे समदी भाई जी ए बोले बैना वीकेंड या वेल दिस इज बैना वीकेंड यार, चाहे जो चीज भी कहते हमें करिए। और चलिए गाना आप लोग के नाम परिवार सौदागर के लिए

बना। वाल तारीफ करूं क्या तुमने जिसने तुम्हें बनाया यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने अमसरम सैतोस में हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। खुद मोरखे

हमने तुमको देखा एंड ऐसे वेल कितना मोल आई बॉय यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने लो करीबन 18 मिनट बाकी रहा 12 बजने में 18 मिनट फॉर 12 वेल थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ यार चलिए अब की बार पंकज उदास एंड साधना सरगम जी की आवाज में गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

बल कभी आंसू कभी खुशबू नखमा बनकर और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और अभी खास करके पंकज उदास एंड साधना सरगम जी की आवाज में।

ओ मेरे हमराही, आयुषरों से देवेंद्र सिंह सिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 4 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। जबल आई बॉय।

वल तेरी उम्र है 16 साल एंड सजनिया बहिया में बहिया डाल। और हमारे प्यारे सुने वालों, यही आशा कि जिस तरह से प्रोग्राम को आज हमने बनाए सजाए आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को जरूर से पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए और हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। यहीं पर हम आप लोग को छोड़ के जा रहे हैं, यहीं पर हम आप लोग से मिलेंगे।

और तुम लोग अपना वीकेंड तो लोग मौज से बिताइए, और ये शुक्रवार का शाम और रात्रि तुम लोग का आप लोग मौज से बिताइए, मौज से पकाइए, मौज से खाइए। एंड इधर जो रिसेप्शन में पढ़ाई से दंग केवाओ विशाल खेमाई के आवाज में गाना जो आप लोग सुन रहे हैं, हम आप लोग से इजाजत चाहेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुबह शिव गोविंद। पेन वीकेंड अलमाओ स्वाई स्वाई बाय बाय।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल के आयु में एन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की मां पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी आम्स्टरडम ओस ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू की विधवा थी और लोग इन्हें लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। आम्स्टरडम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की मां पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी आम्स्टरडम ओस ट्रांसवालस्ट्राट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 3:30 बजे जोंदा खानस्तांद हालफ फिर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर इतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू के दुख में शामिल है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी ताड़ आप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहे दिन कांतोर उरन 020 409 08।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. Een vrouw uit Uden is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: कोटों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है
3: कोटों पे सच्चाई रहती है
4: मुकेश जो आप सबके प्रिय गायक थे मेरे बड़े भैया थे मुकेश भैया एक महान कलाकार थे एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

0: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर।
1: हाँ? क्या कहा?

उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत। ये था आपका और हमारा साथ उजाला रेडियो पर। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात होगी उजाला रेडियो पर, आप जानते ही हैं।

0: रिदम में रहिए उजाला रेडियो के साथ।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। आम्स्टर्डम ओस्ट फ्रोलिक्सराद से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त खियार और बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी आम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्राद की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। आम्स्टर्डम फ्रोलिक्सराद से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त खियार और बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू की आजी आम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्राद की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी की दाह क्रिया आने वाले इतवार दिन में 3:30 बजे जोंदा खानस्तांद हलफीर किए जाएंगे। वैस्कार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुर्जोरखिंग परिवार अकलू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे अब हम क्या देखे। लता जी एंड किशोर कुमार, फिल्म कभी कभी का गीत आप सुने।
1: मेरी जान
0: ठहरो मेरी जान, एक बार फिर किशोर कुमार एंड लता जी।

0: करो कि जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, आ गले लग जा फिल्म का नाम, और गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए, तो अगला गीत सुनिए।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: जी अरारे झूमे ऐसे जैसे बलमाना चिमोर, सावन का महीना है और पवन करे शोर। लता जी मुकेश जी के साथ फिल्म मिलन का गीत।
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

शाह भोसले और मोहम्मद रफी से आप सुने फिल्म कुर्बानी का गीत कि क्या देखते हो। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और हम लोगों का तार का नंबर दफ्तर के समय तैदंस कांतोर उरन 020 409 0807।

होता है ये जिंदगी के साथ लता जी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये। फिल्म नूरी का गीत पेश है

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला पिंधनाओ, उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए, उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।